पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाउ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नूं बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो किन बिद रैन रहोरे, बाप साबका करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं, ऐ मनुख बिना सिमरन दे होर जितने भी कर्म कांड हैं, दुनिया दे कर्म हैं, उन दान जप तप इना नू फल नहीं लगन वाले। कहो नानक एह तत बिचारा, जपा सिर जप की है प्रभु सिमरन है, तपा सिर तप की है आख्या प्रभु दा सिमरन है, कर्मन सिर कर्म केड़ा कर्म है, हर को नाम जप निर्मल कर्म, प्रभु सिमरन तो बिना तेरा छुटकारा नहीं हो, प्रभु सिमरन तो बिना जितने भी होर तेरे कर्म हन ओ जीरो हन, ते जीरो जितनिया मर्जी है लाई जाइए उना दी कोई कीमत नहीं होंदी, जदों तू नाम दा एका लावेगा ता ओ जीरो दस बोलेगी, सौ बोलेगी, हजार बोलेगी, फिर तेरी मेहनत है, जितना सिमरन करी जावेगा तेरे पुन वध दे जानगे, तेरा जीवन उच्चा सुच्चा होंदा जाएगा। इसलिए गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ने, मैं सारिया धर्मां दा तत तुहानू दस रहा, जितने भी इस धरती ते धर्म शास्त्र हन उना दा तत मैं तुहानू दस रहा हां कि बिना सिमरन दे, बिना भगवान दे भजन दे छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए कहो नानक ए तत विचारा।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इसके गाउण का समा दिन का पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है अते इसनु राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, इसनु गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मिलता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ

संगत दे झूठे कौले माई दे पे आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह हो कौले माई जान बाबा ही कोले माई दे पे कोला हाथ चे नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला इन्नी क लेव लग के कोला माईदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नो दस मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे ते बाबा जी का उधर लेव जदों हिंग नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी जदों ध्यान वेखिया साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही है सवा नाल लिबड़िया हाथ भी लिबड़े ने सवा दे ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा कहंदे दीप सिंह कोले माई दा पे बाबा जी तुहाडी कृपा ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा ना ते तन गुरु गोबिंद

युद्ध के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाच तीन लोक गाइया कहु के तनैया है न मैया जाके पैया हूँ छोड़ हो के चुना कोड जादो प्रीत लाइया साधना सदैया धूल तानी के पदैया तोर ताम के पर...

रह रहे बड़े पतवंते कवि जिन्हां ने साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी पावन चरणा अंदर बिने कीती सतगुरु जिन्नियां गल्लां आप जी ने कहे हन जितने वचन महाराज जी ओ सब सच होए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। और गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की साहिब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जदों सिखां ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है ते पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहिब की धरती दे उपर बैठे हां कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख की पूजा विच लगा रहेगा उन्हां चिर एक कुराहे नहीं पै सकता जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दिती ना ये भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जिहड़े हन श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश कीते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें पिकर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे, ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा, इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकते।

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

आख्या क्यों महल माड़ियां दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज भूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देवेगा, बस इस तों वध होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बंदे सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखदे सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसदा शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालिया ने ओ लंगोटी भी तोड़ ली। ए सोने दी चैनी भाई किधर लै चलिया, इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कारज साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार, बस इतनी कोई तेरी होगा।

कृपा मोहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तैनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तैनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, इह उहनूं दिंदा जिहदे ते उह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी इह मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, साध संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए। ऐसी मंग इस शब्द विच